इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।

0: Chinar Beats ve Darce Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: मेरे साथ खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता. सो उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दे।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Çınar Beats ve Darce Diva, only on Radio Çınar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with RJ Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.
5: RJ's.

Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Destroy Region Arc'ı Hardest Frequency Paran Joy Karam Master Show What's up
1: Lardke Superman Na koi team na koi plan
0: मैं हूं जॉक्सियस याद रखिए आपने फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना है रेडियो चैनल 90.4 एफएम को फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब एक्सपर्ट
1: हो लड़के सुपरमैन
0: डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में और दिल की धड़कन रेडियो चैनल सिर्फ धड़काते रहो
2: या भाई तेरा बस लिखते गाने हर दुनिया देती ताने से इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन है चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM।

0: Kommer här, ja.
1: Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update.
2: हर इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम पर ब्रदर आज का वेदर
1: रेडियो चैनल रेडियो रेडियो चैनल वेदर अपडेट
2: जी हाँ आज का वेदर और ये बताएंगे आपको कि क्या है आज के वेदर का हाल क्या एकदम फीका या पूरा बवाल
1: रेडियो चैनल रेडियो रेडियो चैनल वेदर अपडेट
2: वैसे पूरा बवाल ही होने वाला है बिकॉज इट्स मोस्टली सनी फॉर टुडे आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कल के मुकाबले एक डिग्री ज्यादा इट्स गोइंग टू बी 28
1: रेडियो चेन्नई रेडियो रेडियो चेन्नई वेदर अपडेट
2: पूरा दिन रहेगा सनी और सनी होने के साथ साथ अभी की बात करें तो यूवी इंडेक्स वीक पर ह्यूमिडिटी 58% विंड स्पीड है 0 पर विजिबिलिटी 4 किलोमीटर आज का सनराइज हुआ 6:25 पर आज का सनसेट होगा 6:18 पर जी हाँ रेडियो चैनल 90.4 एफएम शो का हिस्सा बनने के लिए 8899-04904 इज द नंबर मैं हूँ जॉक्स मस्तार शो वो सब मेरी जान सिटी हट धड़काते रहो

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
4: Radio Tron 90.4 FM Viral on WhatsApp.
2: What's up?
4: जी हाँ, एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पर हम आप तक पहुँचाते हैं जो होता है वायरल। तभी तो कहत क्या नहीं, और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जानी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए बात करते हैं उन जज्बाती लोगों की जो ये भूल जाते हैं कि उनके अलावा भी दूसरे चीजों का महत्व और इम्पोर्टेंस है। एक यूक्रेनियन कपल जिन्हें अरेस्ट किया गया बिकॉज उन्होंने एक वीडियो बनाया ओमान में, और उन्हें डिटेन किया गया क्योंकि वो एक सी टर्टल पर राइड कर रहे थे, कछुए पर जाकर बैठ गए, और जो वीडियो सर्विस हुआ तो सबने जाना कि ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है सी टर्टल की, और फाइनली दे एंडेड अप इन द जेल। जियो कपल का क्लेम करना है कि दे वर अनअवेयर ऑफ द लॉज एंड अबाउट पीपल टचिंग द टर्टल्स, बट ये है कि जब आप किसी स्पीशी को नुकसान पहुंचाए तो प्रकृति किसी न किसी को भेज ही देती है बदला लेने के लिए। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और करते रहते हैं, खाम खाम में किसी जानवर पर, बेजुबान जानवर पर पत्थर मार दिया, हड़का दिया, धक्का दे दिया, गाड़ी से डराया, और ऐसे किसे कहीं ना कहीं अगर कानून सख्त हुए तो जेल पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, नहीं पालनी चाहिए गलत फहमी। रेडियो चुनाव 90.4 FM, अपनी गलत फहमी मिटा और हर दिल की धड़कन को जोर से धड़का।

मैं हूं जॉग्ज़, सुरेख तरकाते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिरार 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोड कहता है, बिफोर यू स्पीक लेट योर वर्ड्स पास थ्रू थ्री गेट्स। इज इट ट्रू? इज इट नेसेसरी? इज इट काइंड? हर दिल की धड़कन रेडियो चना सिटी हक धड़काते रहो।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: to Zeus. Going now.
1: Zeus.
2: Duygu Dırgın Kudurkan'a ya. Sonra Radio Canal 90.4 FM Burmazlar Show. What's up?
1: Yes.
2: मैं हूं आपके साथ ही जॉक्स। याद रखिए अपने शो का हिस्सा बनकर अपने हिस्सा हम तक पहुंचाना है। 8899 0049 0049 नंबर। Yes, my love is 8899 0049 0049। जी हम शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में हमारे साथ जुड़ी हैं सकीना। लिखती है सकीना, सर लोग मुझे प्यार से सक्कू बोलते हैं और मैं चाहती हूँ आप भी मुझे सक्कू बोले। ओके सक्कू, थैंक यू सो मच शो का हिस्सा बनने के लिए। आगे सकू ने लिखा है कि सर सुकून देता है आपका शो और सुकून मिलता है रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी से। ओके तो सकू सुकून जो मैच किया आपने, आई गॉट द पॉइंट। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। हमारी कोशिशें तभी रंग लाती है जब आपके दिलों को बाती है। हमारे साथ शादाब जुड़े हैं। लिखते शादाब, सर इट हैज बीन अ व्हाइल व्हेन आई हैव टेक्स्टेड यू, आई होप कि आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। अरे वाह, पूरी फॉर्मेलिटी डाल दी है, मिक्स की है। और आगे लिखते हैं दैट आई वांट टू कन्वे दैट आई लाइक रेडियो चनार एंड आई हैव बीन टेक्स्टिंग यू गाइस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और जब नहीं करता हूँ तो बड़ी कमी महसूस होती है। अब ये प्यार का जो सिलसिला है, कभी आपको हमारी कमी और कभी हमें आपकी कमी होती रहती है। शॉर्ट में गए तो विटामिन यू की कमी नहीं होनी चाहिए। शादाब थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। रेडियो 90.4 एफएम, जी हाँ आज हम बात कर रहे हैं पीस ऑफ माइंड की। और पीस ऑफ माइंड जब आप अपनी एनर्जी को क्लेम करते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को क्लेम करते हैं, क्लियर बाउंड्री सेट करते हैं और अपने आप को कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देते हैं। आपने कभी तो महसूस किया होगा पीस ऑफ माइंड तब मिलता है जब आप छोटी छोटी सिचुएशंस पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, एंड व्हेन यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ विद मैच्योरिटी एंड रियलिटी। नाउ द पॉइंट इज कि कौन से ऐसे डेली हैबिट्स हैं जो आपके पीस ऑफ माइंड को मेंटेन रख सकते हैं। दैट्स कॉन्शियस ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करना। आप कॉन्शियस ब्रीदिंग में क्या होता है, स्लो डीप ब्रेथ्स लेना, एक्टिवेट योर बॉडीज रिलैक्सेशन सिस्टम और स्ट्रेस को जो है लो कर देना, और अपनी जिंदगी में ब्रीदिंग कंट्रोल जरूरी है। नेचर के पास जाकर बैठना, कहीं ना कहीं नेचर आपकी बॉडी माइंड को काम कर देता है और आप का टेंशन रिलीज होता है, थॉट्स क्लियर होते हैं। आज की डेट में जब सब फोन हाथ में रखते हैं, देखते रहते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, नाउ व्हेन यू पुट योर फोन अवे, टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस फॉर द डेडिकेटेड टाइम और द सिलेक्टेड टाइम। वो क्या होता है, जो आपका जो ब्लॉकेड होता है ना दिमाग में, वो जो डोपामाइन रश की लालसा होती है उसे रिसेट कर देता है। हाँ, जर्नल्स इस्तेमाल करना, लाइक राइटिंग डाउन योर थॉट्स, इमोशंस एंड वॉट एवर यू आर फीलिंग, कहीं ना कहीं आपके माइंड को पीस देता है, मतलब पीस ऑफ माइंड देता है। नाउ द पॉइंट इज कि पीस ऑफ माइंड तो तब भी मिलता है ना जब आप हमसे जुड़ते हैं। 8899 0049 0049 नंबर, इट इज 8899 0049 0049। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज, एंड मोर ओवर एनीथिंग इज द टाइम फॉर सम लवली ट्रैक्स जो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। 90.4 FM पर, जी हाँ, गाना सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन, मैं हूं जॉक्स्यूस। आप यूं ही बने रहें, सुनते रहें हर दिल की धड़कन को, धड़काते रहें। आप सभी सुनने वालों के लिए कासा टुपका ये नगीना, आहा चुम्मेश्वरी गाना, रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर सुनते जरूर जाना। मैं हूं जॉक्स्यूस, मजेदार शो व्हाट्सएप मेरी जान, सिटे हक्ड, धड़काते रहा।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

यहाँ दोस्तों प्यार से प्यारी रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन और इस धड़कन को दरकत है शो का हिस्सा बनने के लिए 9999904904 इस नंबर आप सुन रहे हैं मजदार शो, सब मैं हूँ जागजू 9999904904। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज, डीएम करने के लिए डीएम भी कर सकते हैं जागजू उसके नाम से मिलोगा इंस्टाग्राम पर JOCKEUS, दिस इज द आईडी जहां पर आप डीएम करके भी शो में शामिल हो सकते हैं। समरीन खान हमारे साथ जुड़ी हैं, इंस्टाग्राम पर लिखती हैं सर मुझे शाउट आउट दो। देखिए मैं कंटेंट चेक करूंगा, अगर आपका कंटेंट मेरे दिल को भाया, वेदर इट इज पिक्चर्स और द वीडियोस और द रील्स यू हैव बीन अपलोडिंग, तो डेफिनेटली आई विल गिव यू अ शाउट आउट। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और दिल की धड़कन रेडियो चुनार, इस धड़कन को धड़काते हैं आप।

0: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन एंजॉय कर रहे हैं। मजेदार शो व्हाट्सएप शो में अगले सेगमेंट्स टेक टॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज।
1: जो कहती थी मत पियो ना मेरी जान।
0: टेकवर्ल्ड से न्यूज लेकर बॉलीवुड के तड़कते भड़कते अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। जरा सा इंतजार दे रहे हैं प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़का दे रहा हूँ मेरी यार। मैं हूँ जॉक्सिस।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Ninja Zeus. Kom nou ja.
1: So friends, waqt ho chala hai ki aaj ke liye aapse li jaye ijazat. लेकिन इजाजत लेने से पहले याद दिला दूं आपको, बता दूं आपको कि आपसे जुड़ने वाली है और जी दीवा कुछ ही देर में शो का नाम रहेगा चनार बीट्स। जी हाँ, बीट्स ऑन रिपीट आ रही है म्यूजिक की थानेदार। आप बने रहें, सुनते रहें रेडियो चनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें। मेरी जान, टिल वी मीट अगेन, कीप योर हेड्स हाई, वॉक टॉल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू ऑल। Bye bye, tata, take care, kushbash, masalama.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

ये बाड़ी करने के लिए तो यो है, और अभी मैं शो शुरू कर लिया है और शो में आपका साथ देने के लिए मैं तो 91.4 रेडियो चुनार पर आगाज हो चुका है शो चुनार बीट्स का, और मैं आपको मैक्स को तो नहीं बट फिलहाल के लिए जर्नी में आपके साथ हूँ बराबर दो बजे। शो चुनार बीट्स ये सारी बातें, और क्या है ये, यहाँ पर बातें है जिस बात है हालात है

Chinar Beats with Dhar Chediva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Jeremy. बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार, बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम पर। ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक, फन, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। और मैं हूँ वहाँ का है दस्तूरे का जाने का हजूर, यानी कि मैं और आप है। तो मुझे लगता है कि बीट्स ऑन रिपीट होती है वाई वो ट्राइब होती है, वाई बढ़ाने के लिए मुझे लगता है मेरी पूरी ट्राइब ही काफ़ी है। सो इस ट्राइब को आगे ले जाने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा थड़का मसाला और इर्द गिर्द क्या चल रहा है बॉस, सब आप तक पहुँचाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं तो शो का ऐसा बन चुकी हूँ आपके जुड़ने की देरी है बस। अगर आप अभी मुझे सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आप ये दिल की बात में पहुँचा सकती हूँ वहाँ वहाँ तक जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनाव की आवाज़, बस आपने क्या करना है, शो का ऐसा बन जाना है और एंजॉय करना है यहाँ पर।

मर रही है तो नहीं, मैं रीवा और मेरी पूरी वाइब और ट्राइब है बाग टू बाग सॉन्ग्स है, मौका है, दस्तूर है, कहाँ जाने का हुजूर, एंजॉय कीजिए यहाँ पर बाग टू बाग सॉन्ग्स हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: देखिए मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, नेशनल हाईवे पे आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। टेंशन का है लेने का हमें ना यहाँ पर, और सही जानकारी हम पहुंचाते हैं आप तक। और ज़रूरी है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी वेरी एक्टिव एंड यू शुड नो कि ट्रैफिक गाइडलाइंस जो है उसके मुताबिक ही आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि TCU जम्मू, राम मंदिर, श्रीनगर से संपर्क करके अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए आप पा सकते हैं। फिलहाल मैं ये बोल रही हूँ कि मानना ये चीज़ है कि हमारी ट्रैफिक वॉलर्स हमेशा हमारे काम करते हैं, और हमें ये चीज़ भी एक्नॉलेज करना है कि उनका हमने सम्मान करना है, हमने अपना भी सम्मान करना है। अगर हम उनका साथ दे रहे हैं, हम खुद ही कुछ चीज़ों का पालन कर रहे हैं। टेंशन ही लेने का, टेंशन तो ऐसी चीज़ है ना कि जो हमारे लिए बनी ही नहीं है। फिलहाल के लिए आप मुझे बताइए कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए बनी और आप पहुंचाना चाहते हैं। रेडियो चुनार की वाइबो ड्राइव था, चुनार बीट्स शो आप एंजॉय कर रहे हैं ऑन योर रेडियो चुनार 91.4 FM।
1: Chinar beats with Archie Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
3: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
3: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
2: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
3: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
3: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM हर दिल की।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: पड़ोसियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM। RJ's

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

Beats with Archie Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: राहुल,

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

money.

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज।

शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: FM। रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

पुराना है जट यमला पगला दीवाना हो रप्पा, किसी बात न जाना क्योंकि

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 94.

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

सुबह, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय नटखट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

खुशबू फिजा में बिखर जाए तो समझ लेता हूँ कि तुम हो, धड़कन जब सुरीली बन जाए तो समझ लेता हूँ कि तुम हो।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।